लेखा लेखा केता हुई केता तान सवाल रूप केती दात जाने कौन कूत केता पसाओ एको कवाओ तेते हुई लख दरियाओ कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोन जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान।

जिन्हें लिखे तिसे नाही जिव फरमाए तिव तिव पाए जिता किता तेता नाऊँ बिन नावै नाही को थाऊँ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकारी भरिया हथ पैर तन देह पानी तोता उतरस खेह मूत बलीते कपड़ होए दे साबून लिया उतोए

आनंद सर्मखंड की बाणी रूप तिथै काढ़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कै पिछै पताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरा सिद्धां की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई हो रही।

काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाए पूरब लिखत लिखे गुरु पाया मन हर लिव मंडल मंडाए कर साधु।

गुणे हो होर नाही कोए, ना को हुआ ना को होए। जे बड़िया तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खस

काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीव परया सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधु जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संबाही ठाकुर काही मन पाव करिया उड़े उड़ा वह सह कोसा तिस पाशे बचरे शरिया तिन कवन खुलावै कवन चुगावै मन में।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौनी त्यावै ताई सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी।

अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर ये महस जन पियो जन्म जन्म चुके पै फारे दुर्मत बनासु परम पियो दर्शन पेख तुम जी जाओ सुनकर वचन तुम्हारे सतगुरु मंत्र मेरा ठार दियो रहाओ तुमरी कृपा दे भयो साध संग यही काज तुम गाप कियो दृढ़ करो चरण गहे प्र तुम रे सहजे विखिया पई खियो

0: अपना मृत जौनपुर का पार
1: सर्वमान त्रिमान देव विवाद उदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल
1: जत तत विराजे अद्भुत रूप रसाल
0: नाम धाम न जा जाकर रूप रंग न रेख
1: आज रूप दान।

0: चन चत चक्र कर्ता चत चक्र हता चक्र दाने चत चक्र दाने चत चक्रवर्ती चत चक्रपती
1: चत चक्र पाले चत चक्र काले
0: चक्र पासे चत चक्र वासे
1: चत चक्र माने
0: चत चक्र दाने
2: छात्री छना छत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे
1: न कर

0: अच जैसे के अभिज फिस
1: आगज कर में के आगज पर में
0: अभिज लोके के सोके
2: अलव दुखने के भी बुद्ध करने
0: राजंग प्रभा है के तर्मंग तुजा है
1: यासो करने के सर्वा बरने
0: रत्न कृति है के चत्रंग छत्री है
1: बर्मंग

0: स्वरूप है, अछिज्य है, अछूत है,
1: मुक्त
0: प्रभा है, सदैव सदा है,
1: स्वरूप है,
0: मुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है।

0: खिराज है गरीब निवाज है।
1: हरि फुल्सिकन है हे रासुल फिकन है।
0: कलंकं पनास है समस्त निवास है।
1: अगजुल गनी है रजाइक रहीम है।
0: समस्त जुबान है किसाय किरान है।
1: कलंकं पनास है बहस्तुल निवास है।
0: सर्वुल गमन है हमेशा लवन है।
1: तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है।
0: परमेश है समस्त अदीस है।
1: सुल अलेख है हमेशुल अपेक है।
0: जमीन अलजमा है हमी कुल इमा है।
1: गरीबुल कमाल है के जरूरत जमाल है।
0: अचरंग प्रकाश है कि हम तो सुभाष है।
1: अजब स्वरूप है के अमितो बेपूत है।
0: हम तो फसा है कि आत्म प्रभा है।
1: अचलन अनंग है के अमितो अपंग है।
0: अछंत प्रसाद मन मन पनाम गुंगन मुदाम।
1: हर बर अगंज हर नर पर बंज।
0: अंगन पनाम मन मन सलाम।
1: हर नर अखंड बर नर।

0: अकर्मन परमन गंजे अलेखे
1: मर्याद चंद नमस्तल पनामे समस्तल पनासे
0: अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे
1: निकामंगी भूते समस्तल स्वरूपे
0: कुकर्मन परनासी सुदर्मन बेपूते
1: सदा सच्चिदानंद सतरंग पनासी
0: करिमुल कलिंदा

0: टोल मद्रंग नगारे गुंजत गुड़ गुजान के सुंदर राज हजारे विग्वान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्रीपद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिदारे
0: नान दिया दम दाम सुसंज मने मनेक बसे के
1: वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सवान के पेक है
0: हार जती जतार सब सब चार हजार के देखे
1: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लेखे
0: सुबाद रंत दुबास साज सुनादर जान दलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे
0: रीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्रीपद श्री भगवान कृपा में त्याग जहान निदान चलेंगे
0: पाठ बड़े बरियार बचारे सार की तार बचैया
1: तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
0: गरान के तोर नहा सो बात नीचक चार लगैया
1: साहिब श्री सबको सिर नायक चाचक अनेक सो

0: कुछ कपेंगे
1: सास मुख पर सन फिरे जग सतर समय अब लोग चपेंगे
0: रविंद्र के चंद्र नाद जोंत लोग को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजा दिख दान अनेक स्वयं

0: लिए सात समुंदर लोग के ऊपर लोग को आयो
1: बैठ के ऐसे ही ऐसे सब बस बतायो
0: साज को हो सुन लियो समय जिन प्रेम की।

0: बुध है जेती बनत पिन पिन तो तेती
1: तुमरा लखा न जाए पसारा कै भी सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूप रंग प्योर ऑफ गई पूपा
1: अंड जेर से तजकीनी उत्पज खान बहो रच देनी
0: को फूल राजा हुए बैठा को सिमट पे संकिर गैठा
1: सगरी सीट दिखाए चंब आज चुगात स्वरूप से अंब
0: अब रचा मेरी तुम करो सिख बाण सिख संगरो
1: दूस जीते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणकाता
0: ये अस्तुष्ट सरनी परे तिनके दुष्ट कि तुए मरे
1: पुरक जवन पक परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
0: जो कल को एक बार त्याए ताके काल निकट नी आए है
1: रचा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट रे तत्काला
0: कृपा दुष्टन जाए नहरो ताके ताप तनक मोहरो
1: रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाछ है सक

0: वचन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया
1: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया
0: जी जन सब तू दो पाए एक वेग प्रसन्न आया।

0: लाभ लोभ अहंकार तज तिसना बहुत नाही बोलना
1: मनोति की वालों की एक मार्ग जाना
0: गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी।

मात पिता हम बारिकते तुमरी कृपा में सुख कोई न जाने तुमरा अंत उचेते ऊंचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौने दया वै ताई सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां

अब सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहु सच्ची बाणी। बाणी ता गावहु गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनका नदर कर्म होवै, हिरदय तिना समाणी। पीवहु अमृत सदा रहु हर रंग, जपे हो सारिंग पाणी। कह नानक सदा गावहु, एहे सच्ची बाणी। कह नानक सदा गावह, एहे सच्ची बाणी। सो कहो ढल गुर सेवीऐ, अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसेऐ गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटीऐ। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटीऐ। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसा हांदै साहो।

तीर्थ कोट किए स्नान, दिए बहुदान महाव्रत धारे, देश फिरयो कर पेश तपो तन, केस तरे ना मिले हर प्यारे, आसन कोट करे अष्टांग, तरे बहन्यास करे मुख करे, दीन दयाल अकाल पजे बिन, अंत को अंत के ताम सिधारे, दीन दयाल अकाल पजे बिन, अंत को अंत के ताम सिधारे, सो कहो तल गुर सेवीय, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटीए, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटीए, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदे साह, जिस पास बैठिया सुहिए, सबना दा वेसाह, सतनाम

दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल। राज मिलक सिकदारिया अग्नि मह जाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणा विच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी, आप समूह संगतां दे चरणा विच बेनती है कि कल मिट्टी 12 तरीक नूं दिन शनिवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का पहला प्रकाश पुरब है, जिस संबंध विच आप समूह संगतां दे चरणा विच बेनती है कि तकरीबन सवेरे 2:30 बजे तो लैके 2:45 दे करीब करीब श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप आरंभ हो जाणगे अमृत वेले, जिन्हां दे भोग 4 बजे पै जाणगे। उस तो उपरंत 4 बजे तो 4:40 तक प्रभात फेरी होवेगी। उस तो उपरंत 4:40 तो लैके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप निजे स्थानां तो तखत साहिबाना पर विराजमान होणगे। उपरंत संगत वालों 4:40 तो 5 बजे तक सवइयां दे जाप होणगे। उस तो उपरंत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश हुक्मनामा साहिब नेतनेम दीयां बाणियां दे जाप ते आसा जी दी वार दे कीर्तन होणगे। उपरंत 9:15 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे श्री अखंड पाठ साहिब जो आरंभ किए हुए हैं तिन्हां दे भोग पैणगे। आप समूह संगतां ने दर्शन देने की आप कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी हर एक निरंजन गाइए सब यंत्र सुई करण कारण समरथ प्रभु जो करे सो होई खिण मैं थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पताल दीप रव्या सब लुई जिस आप बुझाए सो बुझ सी निर्मल जन सोई श्लोक

एक बार जाओ श्लोक आई ग्रह रचना या पारंग मन बलास सुआदय रसाय कदांच न सिमरंत नानक ते जंत बिष्टा किरम है मोचे अडंबर हब केहो मांज मोहब्बत नेह सो साई जय विसर नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरी ग्रह सोइन चंदन सुगंध लाए मोती हीरी

तो विद मन तीरे चलोकाय चरण कमल बिरहंख जंत बैरागी दह दिस है त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग है मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबे आडंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोई पौड़ी।

लोकन राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्भतै संचंत बिखया छलं छिद्रंग नानक बिन हर संग न चलते पेखंदड़ों की भुल तुम्मा दिसम सोहना अड न लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुली माया पौड़ी चलद्या नाल ना चलै सू क्यों संजीऐ तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजीऐ हर बिसरिया क्यों त्रिपतावै ना मन रंजीऐ प्रभु छोड़न लागै नरक सुमंजीऐ हो कृपाल दयाल नानक पहु पंजीऐ सलूक नच राज सुख मिष्टं नच भोग रस मिष्टं नच मिटं सुख माया मिटं साध संग हर नानक दास मिटं प्रभु दर्शनं लगड़ा सोने हो मन मजाहू रत्या विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी हर बिन कछु न ला गई भगतन को मीठा यान स्वाद सब फीकिया कर निरनो डीठा अज्ञान परम दुख कटिया गुर पहे बसीठा चरण कमल मन बेदया ज्यों रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिन से सब झूठा सलोक त्यकत जलन न जीव मीनंग न त्याग चात्रिक मेघ मंडल है बाण बेदंच कुरंक नादंग अल बंधन कुसुम बात नहीं चरण कमल

मित पौड़ी ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै बूंद विहूणा चातर को क्यों कर तृपतावै नाद कुरंका विद्या सन मुख उठतावै।

श्लोक चितवंत चरण कमलं सासे राधन नह सिंब सरंत नामे अचुत नानकास पूर्ण परमेश्वर है। शीतला मन मंजाए पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी ने बाही सदा पखंदो सच तनी पौड़ी। आसा बंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद ना कबहू चूरी आई।

दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त न माया भाई बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जेने उपाई मेदनी नानक तू प्रभ जाप पौड़ी जाप

खात खर्चत केशन ने खुटत नाही राम रतन तन खाट्यो भस्मा पूतो आखन पेतर अपना किया पाया या गम ने गम कह जन नानक सब देख लोक सुभाया टूडी महला पंजवां किरपन तन मन किल विख परे साध संग भजन कर स्वामी टाकन को एक हरे रहाउ अनेक छेदर बोहित के छुटकत थाम ना जाहि करे जिसका बोहित ते से अराधे खोटे संग खरे गले सैल उठावत चाहै वे ऊहां ही है तरे जोर सगत नानक किस नाई प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवां हर के चरण कमल मन त्याऊ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाऊ रहो तीने ताप निवार नहारा दुख हंता सुख रास ताकू बिघन ना को लागै जा की प्रभ आगे अरदास

सुखामण बिस्मन बिस्म पहे बिस्म माता यान भी उदू सरला मन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जामुन टूडी महला पंजवा माई माया चल तिरन की अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हड़का जल रहाउ छोड़ सियाणप बो चतराई दुए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख देह काए हे उत्तम फल भेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दैन पए मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड्डा भाग देवै परमेश्वर कोट फलां दर्शन गुर डीठे राहु

पंगुर प्रसादी याके अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस कुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगारी।

तैलंग माला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पहो तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत मैं दवाना पया तीत कर कासा दर्शन की भूख मैं धर्मंगू नीता नीत तो दर्शन की करूं समाए मैं धर्मंग पी क्या पाए रहू केसर कुसुम मृग मैं हरना सर्व शरीरी चढ़ना चंदन भगता जूत नहीं सर्वे परमल करना के पट पांडा कह न कोई ऐसा भगत वर्ण मैं हुई तेरे नाम नवे रहे लिवलाए नानक तेर दर पी क्या पाई तलंग महला पहला करती जाए कोई ओंकार सतगुरु प्रसाद ए तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लाभ रंगाई मेरे एकांत न पावे झोलड़ा प्यारी क्यों तन सी जय जाए हौ करबाना जाऊं मेहरबाना हौ करबाना जाऊं हौ करबाना जाऊं तिना कह लैन जो तेरा नाऊं।